0: Τώρα είμαστε εμείς διδάρτο που γεγιές για πάντα σαπάρ σύντε τόσα εγώ χωστήτη.
1: Για να τίσε τα αρχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ ο χωστήτη.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ. Μάρα εμείς δι μόχο κορτά νέσνελ ο μαλτι νέσνελ. Καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βαρίβι. Κούρς εξάρ γιλάρ τα κίγε δα σαραγγε σαρα προβρή.
1: Δελκολ τα αρχανά τα γιλε βε χάρ βάχτε μούτα χάν κούρς εκραλέ. Ο τσεκάρανα με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοράλ σε ρικρέ δι. Ο στούλ κούρβαλα να χωσούλ δι.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरब रो उदार इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियात थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियात दागा दी ची कपड़े को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सारा खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सफाई पवात लोसीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो दाओ मोता चेरता मिला जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने গলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেব সারদার তে মেলা বেশি।

ताली में एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए। रेडियो अमन नेटवर्क 1 रंग।

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: दिल की बात प्यार के साथ तो सुने अपना पसंदीदा रेडियो हर पल हमारे साथ रेडियो अमन 88.4 करो।

0: मैं वर्दी के प्रोग्राम से काल तो सर तके नो प्लीज पर नंबर मैंने काल मां के साइदो आ मैं कडर दे सने मेरी दे न्यूअल मां साइ न्यूअल मां से तक काल मारो तके साइदो नो दे सारा सारा जिकि मिगना टोलो मिरता जिकि मिगना काल कावे पर 0 नो सोसाइस 291 292 यानी 0 9 27 21 22 मने काल के अपन नंबर ओनर से साइदो पर नंबर मने ओनर से आउट डिस्टर्ब कॉल न सर की कना साइदो साइदो साइदो गुरी प्रोग्राम से नेक्स्ट कलर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सो खबर कडे किम जिना और रहीन त प्रोग्राम के हर कला सडी माशी वेलकम याई सरंग से लशाय खेर खेर ते मदर प्रोग्राम वरवे प्रोग्राम की तरफ हर कला वे सडी माशी वे पला तक असर गरमा
1: मनाना
0: और रहीन मुफ खेल के तो हम विषय प्रोग्राम वरवे अच्छा वेचर खेर मिलु किम पर प्रोग्राम री उरीन खोर मच किम के ना सकल गले टगिर मो खेल के परियो ना डारी री का पुलिस ना
1: पुलिस
0: अच्छा पुलिस वाल दम मांगो ने तो जो पुलिस मांगो ने तो से सेट से निमिडो अब रिंग के लिस्टर था मुखावर के अच्छा सरंग से लखेर खेर ते मंजिल प्रोग्राम और वे पता तक असर अगर मा बने तो सो मो खेल के खूबी ना ना के वेचरा मिर्दा प्रोग्राम री बखूब के हां अच्छा शाशा माशाल्लाह बस खेर द सलारम रे सिकिम के ना ददारु तो सिकिम के ना आ वकफ कावे का ना
1: आइदो
0: अच्छा सरंग इंशाल्लाह नूरो प्रोग्राम के सरो सर से मिले सवाल जवाब दरसी
1: ना सवाल जवाब
0: आ नो गिफ्ट उधर था मिला वीडियो का ना गिफ्ट के सिकिम के ना लिया शैंपू लिया तेने लाव सिकिम के ना क्रे क्रीम लिया तेने लाव सिकिम के ना फार्मूला क्रीम लिया बर सर सिकिम के ना आ देखी मा आ कोल्ड क्रीम हाट
1: ना ना इत शैंपू ना
0: लाइक अच्छा यो शैंपू चना लगे हो जे प्रोग्राम के सवाल नूर से ना लाइक है अच्छा ना लाइक ने सब विच सबक में देवला हां
1: लाइक
0: है यार सुमर सर वेलाई ला समरा सा उदाई ने दाच किम के ना किम सवाल रो दर्श किम के ना तो से इल्म के इजाफा के दी जब बलर से चरता दरी में के ना प्रश्न अगर ना कि जब दुनिया के अकीम में मलता है चागे से किम के ना जमात रस्ता दाई जके जी जमात ना पटोली दुनिया से किम ने सारे के ना उदा से मलक भी चपागे से जमात रस्ता अच्छा सा साइड डीर जुता मना रोहिंद काल कवली यो जहान ना وعلیکم السلام اچھا رشی خان تو اسپیشل سلام رشی خان پروگرام اور اسپیشل سلام ادھر تھا کو رشی خان دے ایک پروگرام اور اسپیشل سلام ادھر تھا کو سائیڈو سائیڈو سر ڈیر جو تھا منا دے کال کا ہے یو

गुल मखे बला बला वैसे सलाम कैसे हो वैसे हालात वक्यात मौसम बहुत नाइस है आजकल आई एम चमचन चमचन लिखली कस लिखली देर जुता मन यो जहान नो चमचन हो वैसे सलाम भाई जान इमन खान वजीर फ्राम गुल गुल रजमक भाई जान आंशा खान फातमा वजीरस्तान सुंबल वजीरस्तान छोटा गुला लेना दे महारानी लवरग से उजाला मरो दुनिया वजीर रोशी खान सोनिया खान एंड अरमानी वजीर ता स्पेशल सलाम वालेकुम सलाम इमन खान देर जु तमना अरमानी वजीर ता स्पेशल सलाम ना वर्रा सेदल नेख पन्नेगा वैसे रकीब खट के मिलती भाई सॉन्ग प्ले का अमेरिका होना देना लिखला देर छो तमन्ना यो जहान ना

खतरबंधु बिल्कुल लाइव कॉल रो तक लाइव कॉल नंबर सुन सरावली के उबिया जर जरूर से और रस्ते भी आरा से जुड़ी जी लाइव कॉल नंबर दीजिए 0334-744-717 यानी 0334-744-717 कुजीफा कंपनी शिफा तेल इस्तेमाल कीजिए दिसार दिविश्तु ने मसले हल के दिसार न दिविश्तुन वखीजी न वखीजी दिसार विश्तुन दिविर सरगान लुई विजदक शली चमकदार शी दिसार विश्तुन खुरश पखाओ दे बिल्कुल खत्म शी औ देना एलावा कच्चीरे कच्चीरे चीरे दे बदन दर्दी न देवी बदान दे खुशी जी शे लोस अड्डी की अमला दे अड्डी की दे खुशी जी नु खुजीफा कंपनी शिफा तेल ये मलश कवई इंशाल्लाह दर्दी नो मुबारक शी अस्सलाम वालेकुम जी संग खाए जुड़े बिल्कुल खदे फरियाल दो

0: आवाज में दर्जी मेहताब से डेर इंतजार दे ओकलो खफा की गा मदर बांधे जे लग बदल कच लग आवाज दे राशी चिल्ले के खबर खो को
1: कना
0: गुजारा कई गुजारा कई खा खुदा को रस्ता सो मसाला दा ना जमीन चिकाल कड़े वो जमुंगा मसाला वा जगह चगीला जमा आवाज न वर्तलो तास वो उस्ता आवाज न राजी उस्ता सो मसाला दा बरहल अल्लाह दे खुशाल का मेहताब से डेर ज्यादा बखना गवाड़मा जगह चार डेर ज्यादा इंतजार दे रहा था ओकड़ो अभियान खबरें मोनश वाले मजा न कही गा ना इंसान तुम रेर इंतजार हो कि आओ खबरें उनशी दुनिया के टोलो के ग्रान कार चिकम दे गा ना अगर सबर दे उखती खुमे से खबर कवला बस खबर हम लाड़ सर यू खोड़ लो ब्याम पे कालर वाग सुमाई कराता याद ही बे कौमा बस उसरा था याद ना खबर हमें कवला इस्लाम वालेकुम सर सिंह है प्रोग्राम दी नाइस दे माशाल्लाह सर आई एम अबू जर

मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जवान रंग अमन।

झा शांति खबर आशीर ठपा संधरा शामिल वाला शाय 85-83 मन यानी के 8-5-8-3 दिला रहे और प्रोग्राम के बिल्कुल वैसे ही ऐसा डीरो मीनावाल बाओ दासी कड़ी भी कना सार पे खड़ी जवला भी वेले बुवेली आय हाय हाय ओह हो वेले जखा जी माशाल्लाह नजवले कदरदान मेहरबान मैनेजर सेफ जी की मदद कना सुपर सुपर तारिक अजीज वेले बीवी कना बिल्कुल अगच सुमर है मीनावाल दी माशाल्लाह आगो बुसर नडिन जवली बीच आय हाय मैनेजर सेफ को नाश्ता धावी खजौरी दुन को बिल्कुल देखे शक नाश्ता है मीनावाल ची देखा नाम नुदावी शाम हमेशा दा खबर है कौन चाहता दे चा खबर खान वेते चाहते दे चा प्रोग्राम खान वेते माशाल्लाह खुद पुल मीनावाल वे आओ बो सरुने डिंजा वेले ये चा हाय सुपर डुपर वेले ना इसका अच्छा ये सुपर डुपर स्टार ऐसा ये तो फिलहाल में से कह रिश्ते खबर है मैं उगड़ा कहना है बुद्धि ठीक मंदिर जाऊं गुस्सी है प्रोग्राम के नो सुपर डुपर रोसी सा बालश की बिजी होगा ना नागत में खैर रहे प्लस के टाइम दर कवा प्लस के टाइम बाद है बिहारो शाह मैनेजर साहब सा हां इजी जी जगह से ग्राम ना देगा ना दे रेडियो ना यानी प्रोग्राम ना हर्ष के कहना दे रेडियो धुम रहा है आगा चार ही दी नो आगा टूल रिस्पांसिबिलिटी जिदा आगा टूल जिम्मेदारियां चे दी नो आगा दे मैनेजर से पसार विसा दान दे चे नोर चे सुमर हम आशल है आगा टीम कसान दे नो आगा हल गया वे हर सड़ा है पखपल जोई मने गना खपले खपले चारी चे दी आगा सर तरे सभी वो चूंकि मैनेजर से जाए गया आगा बंदे रिस्पांसिबिलिटीज यो थे दे वजह चार चार जस्ट डेरी भी और तो सिर्फ वो आए कहना चाहिए बस रेडियो के खो सिर्फ प्रोग्राम दाई चाहिए बस माइक तक से ना और प्रोग्राम होगा खबरें होगा संदरे होगा छपे होगा ना दासे ना दासा दगा माइक दे सर दाई जी देर मेहनत की सी अलहदा प्रोग्रामों ना अलहदा आवाज से दगा तो से तदर सी यानी दे सर दाई चेदा जस्ट डेर चार लियारी भी जस्ट डेर मेहनत चेदागा शामिल दाशा दे वजह में खबर है कवल आए खबर के सहमा मैनेजर से बरूसी आज की टाइम बाद बरूसी सही था।